0: वाले तो नेता ताते हारेगा आ कोई नहीं देता ही वाया था इते कपाह को ओ तेरंगीर ओ वाइरा रपा
1: Oh, my God!